0: हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया
1: जय नानक ऐसा हर सेव्या अंत ले छड़ाया
0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला दुखदा रोग सुख रोग पया जा सुख ताम न होई
1: तू करता करना मैं नाही चाहो करी न होई
0: बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहा
1: जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर है
0: तू सच्चा साहिब सिफत सवाले ओ जिन की ती सो पार पया
1: कहो नानक करते किया बाता।

0: जीतु आपे करह सो होई
1: तद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तद आपे सहज सब गोई
0: जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानो आसा महला चौथा तू करता।

0: पूर्ण
1: होई हमारी आसा
0: तोर भजन की रह प्यासा
1: तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं
0: जो बर चाहू सो तुम ते पाऊं
1: सेवक सिख हमारे तरिय
0: चुन चुन सत्र हमारे मारिय
1: आप हाथ दे मुझे उबरिया
0: मरण काल का त्रास नवरिय
1: पूजो सदा हमारे पच्छा
0: श्री अस्त जो करिय हो रच्छा
1: राख ले मराखन हारे
0: साहिब संत सहाय प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता
0: तुम हो परे चतुर दशकंता
1: काल पाए ब्रह्मा भवतरा
0: काल पाए शिव जीव अवतरा
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

0: जठन उपजायो
1: आद अंत एक है अवतारा
0: सोई गुरु समझियो हमारा
1: नमस्कार किसी को हमारी
0: सकल प्रजाजन आप सवारी
1: सिवकन को सब गुण सकतियो
0: सतरन को पल मोहबद कियो
1: कट कट के अंतर की जानत
0: भले भले की पीर पछानत
1: चीटी ते कुंचर स्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
1: संतन दुख पाए ते दुखी
0: सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पछान
0: कट कट के पट पट के जाने
1: जब उद कर्क करा कर तारा
0: प्रजा तार तब देह अपारा
1: जब आखर्क करत हूँ कब हूँ
0: तुम मैं मिलत दे तब सब हूँ
1: जेते बदन श्रेष्ठ सब तार
0: आप अपनी बूझ उचारे
1: तुम सब ही ते रहत निरालम
0: जानत वेद वेद अर आलम
1: निरंकार निरपकार निर्लंभ
0: आद अनिल अनाद असंभ
1: ताका मूड उचारत पेदा
0: जाको पेव न पावत वेदा
1: ताको कर पाहन अनुमानत
0: महामूड कश वेद न जानत
1: महादेव को कैत सदा सेव
0: निरंकार का चीनत न पेव
1: आप अपनी बुद्ध है जेती
0: वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती
1: तुमरा लखना जाय पसारा
0: कह विद सचा प्रथम संसारा
1: एक कै रूप अनूप स्वरूपा
0: रंग पयो राव कही रूपा
1: पंडित जे रज से तज कीनी
0: उत्पज खान भोर अज दीनी
1: कहू फूल राजा है बैठा
0: कहू समित पैव शंकर कैठा
1: श्री श्रेष्ठ दिखाए अजंपव
0: आज गाज स्वरूप स्वयं पव
1: अग्रच्छा मेरी तुम करो
0: सिख उबार असिख संगरो
1: दुष्ट जिते उत्पत उत्पाता
0: सकल मलेच्छ करो ऋण काता
1: ये अस्तुज तब सरनी परे
0: तिनके दुष्ट दुख तखवाय मरे
1: पुरख जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब टारे
1: जो कल को एक बार त्याय है
0: ताके काल निकट न आए है
1: अच्छा होए ताय सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट करे तित काला
1: कृपा दृष्ट तन जाय निहार हो
0: ताके ताप तनक मय हर हो
1: सिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई
0: दुष्ट

0: आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया
0: राग रतन परवार प्रिया।

जाए भव जल बिकसन बिकम असगाहो गुरु शब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत सही खाए कल में हो पुन गुण गोविंद गाए।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकर तुम पै अरदास।

सच्ची से जस पाए पैर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिंगार है शोभावंती नार सास बराई सुंदरी पैर कै हेत प्यार सुहागणी विच रंग रखियोन सच्चे लख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागणी सिंगार बनाया गुण का गल हार प्रेम परमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्तमा जात पद शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए ओहो कर दी सब फेरा बिन शब्दे हो ना जाए नानक नाम रते तिन होमे गई सच्चा रहे समाए आसा महला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सची सोए एथे घर घर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लहे ना जाए रहाओ हम नीच मैले आते अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोई न रंगिए बिन गुर कोई न रंगिए गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोर ते सिवती सच समाओ पै बन लाग न लग गई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावने झूठे ठाओ न कोय जिसनु आपे रंगे सो रापसी सत संगत मिलाहे पूरे गुरते सत संगत उपजै सहजे सच सुभाए बिन संगति सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे न जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाजे अवगुण विकणै गुर के सहज सुभाए गुर सेवा ते नाओ पाया उठा अंदर आए सबना का दाता एक है सिर धंधे लाए नानक नामे लाए सवारियन शब्दे ले मिलाया सा महला तीजा सब नावे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नावे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाइए नामे वडियाई रहाओ अंतर बाहर एक है बोबिद श्रेष्ठ उपाई हुक्मे कार कराएदा दूजा कस कहिए भाई बुझना अबुझना तुद किया ये तेरी सरकार एक ना बक्से मेल लह एक दरगह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद नामे लाहे गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पत्ते ना वो आप खवाए ना उन सिद्ध न बुद्ध है ना संजमी फिरे उत बताए नजर करे जस अपनी तिसनों भाव नहीं लाए सासन तो के संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंचिए कस कहने अंत ना पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोझी पाए ए मन देही सोध तू गुर शब्द विचार नानकस देही विच नाम निदान है पाइए गुर कहे ते अपार आसा महला।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नहीं पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग भेद उपाय। हर सिमरन पाए सद जति दाते, हर सिमरन नीच औकुण जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमरा कारण करना। हर सिमरन के अवसर लय कारा, हर सिमरन में आम निरंकारा।

संग तेरा चलाए जय मुस्कुर हो वे तपारी हर को नाम खिरमाय उदारी अनि पुंचन करत नेतरा हर को नाम कोड़ पाप पर हराय गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सकल सुख को राजा दुखी हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम

छूटतनय कोटलख बाही नाम जपतय पार पराही अनुभगंधाय आय संघारे हर का नाम तत्काल उदाराय अनक जोन जन्म मर जाम नाम जद पाम विश्राम हो लमर कवन तो वै हर का नाम कोट पाप खो वै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई ऐसा कै संग जय मर कगन जाहे ना को सार का नाम वहां संग तो सा

बटाओ से जलावा नयता को आत्मा आवे के मन हर के नाम के प्रिय सुखदाई कर कृपा नानका भले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या में ममता माया मिथ्या राजो बंतर मात मिथ्या

करें। कई कोड़ माया श्रम आए, कई कोड़ परदेश प्रमाए, जिस लाभ तत् तत् लगना नान करते कि जाने करता रचना। कई कोट सत जति जोगी, कई कोट राज्य रस भोगी, कई कोट पंख द्रव पाए, कई कोट पाथर बिरख नि बजाए, कई कोट पुण पाणी बस सुंदर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सुर्ण खतर, कई कोट देव दान मंदिर सर क्षेत्र सगल।

सदा सदा एक कंगार कई कोड़के ने भव पात प्रभु ब्रह्मा समाता कांत धने कोय आपे आपना ने प्रभु सोए कई कोड़ पार ब्रह्म के दात न तातम प्रकाश कई कोड़ तार कवे सदा निहार को नेत्र कई कोड़ नाम रश्मि अमर पैसा सदे जीव है।

बृहस्पति कर्ण करावन कर्ण जोग जोत पाव सोई होग किनमें थाप ताप नाराम तनिक पार बार कुमें तारद राहवय कुमें उपदय कुम सुमावय

प्रभाव बिन साथ राखे प्रभावित हरगुण पाखे प्रभावित पत द्वारे आप करे अपन बेचारे दुआ श्रेय का स्वामी के लविक से अंतर जामी।

संग दुख नरक में पाए संग दुख न मातो है मलिन संत के दुख सो बात ही न संत के तो रखे न कोय संग दुख तान प्रस्त हो संत कृपाल कृपा दे करे नान संत संग नंदक पीता राय संत के दुख तम को पवाए संत के दुख का जो लवाए संत के दुख सुरभ जोन पाए संग दुख त्रिक जोन कर्माए संत के दुख तृष्णा में जलाए संग दुख सबको चलाए संग संत के दुख ते सब जाए संग दुख नीच न चाय संत दुखी का था को नाय नान सुन पावे था पिगत पाए संग न दुख मात ताई संग न दुख दिख न पाए संग न दुख मात रस संग न परमेश्वर मारा संत के नंद राजते संत के नंद दुखियार दिन संत के नंद को सर्व रोग संत के नंद को सदा भी जोग संत के निंदा दुख में दुख नान सुन पावे तस का भी हो मोख संत का दुख सदा पवे संत का दुख किसे का नहीं मैं तो संग दुख को डाल लागे संत के दुख को सब त्याग संत का दुखी मां कारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म अमरा संत के दुख न सुख सुख ते टराए संत का दुखी को नहीं ठाओ नान सुन पावे तले मिलाए संत का दुख बीते टूट संत का दुखी किसे का नहीं पहुंचे संत का दुखी के काज न पहुँचे संग दुख को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंदर ते थोता ज्यो सास बिना मृतक के लोथा संत के दुख की जड़ कितना है अपन भी जापे ही खाए संग दुखी को अपना राखन आर नाम संत पावे धन ले बार संत का दुखी में बिलड़ाए ज्यो जल बिन मछली तर फड़ाए संत का दुखी बुखा नहीं रात जय ज्यो पाव के धन नहीं त्रापाए संग दुखी चुटका खेला ज्यो बुआड़ तिल खेत माए दोहेला संत का दुखी धर्म तेरा तो संग दुख समिथ्या कहते कीर्तन का तुरी पे नान ज्योति पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप जाए संत का दुखी को तरका मिले सजाए संत का दुखी सदा सा खाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत का दुखी की भजन आशा संत का दुख उठ चले निराशा संग दुख न दुष्टे कोई जैसा पावे तैसा कोई हो पाया कीर्तन मिटे कोई नान जाने सच्चा सोए साफ कर दिखे ओ करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु की तुझ करो दिन रात सत्यावसा गिरा सब कुछ वर्त किया जैसा करे तैसा कौतिया

बृहस्पति मानव के टैग पृथ्वी सब ध्यान देव उनको क्या भगवान जिसका दिया रह गाय भौर ना तृष्णा लाके आए मारे रखे कौ मान के सुनाई हाथ कौ कौ बोझ सुखो तिर

हमारे चरण साके तो है तो है प्योर साको अपना दियो साके दूर करो इस नान साधु प्रदाय कुर्बान सा सेवा उड़पा की पाई है सा संगर कीर्तन गाये अनेक भगंत साधु रखे हर गुण गाये अमृत चाखे ओट गई संत दरिया सरसो नान ते पाए अमृत को जीवाल हर

करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो चंद्र मल थिया जाके मन गुर के बरते प्राप्त भगत सुनिया तल हो जाके हृदय को हो सच करने सचा के रह सच हृदय सच मुख सच सच आकार सच वर्ते सच

सद्गुणमय तंको परमाय दिन मरा प्रिया वे जाय ऊजने तत्काल स्थान जा सजना वे तथा निदान न रूप न धके रंग न पेखराय रंग न वेद किनो विस्तार प्रभ न से अहंकार नाना चल कर खिरमाय पूर्व पूर्ण थोटाए नाना विद कर बंत बनाये अपनी कीमत आपे भाई साव कर तिसके सब तिसके टाउन जब जब जीव नानक नाव नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाध पाताल नाम के तारे सुगल कार नाम के तारे प्रिय सपन नाम के संगुद्र सुन सरवन कारगर बाज सपने नाम लाए नानी चौथे पद में सो जन गात पाए रूप सत जंका सत्य तन पुरुष सत केवल वरदान करतूत सत सत जाके बाणी सत पुरुष सब मैं सुमाणी सत कर्म जाके रत्न सत मूल सत सत्य पत सत करने निर्मल निर्मल जिस सब जाते सब पल

मार अपने जनका पर्दा ढाक अपने सेव के सर पर राख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव की आपद राखे ताकि कदम को न लाखे प्रभु के सेव को न पहुंचे प्रभु के सेव को उचे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दुष्प्रगटाया निकी गिरी में कदरा के बसम करे लस्कर कोट लाखे जिस

सो एकाय सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विंडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जगन उपाया तिकाय दताया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम रस जो जंत्र ताने मंत्र नामे नाम समाने उठ बैठ सोत नाम कौ नानी जन के सदकाम बोलो जदे बाद अपने जन की नींद आज करा भगत आत्म का चाहे प्रभु अपन सो रह समाय जो हुआ वो सो जाने प्रभु ने कहो कम बचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह के न जानो आठ पैर प्रभु बसा

सादगुरु सिक्खी गुर प्रतिपाल सेवको गुर सदा दयाल सिक्खी गुर दुरमत मल हिरा गुर बचनी हर नाम उजराए सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुरु सिखो नाम तंदे गुर का सोड भागी हे सतगुरु सिख अल पर सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारे गुर के ग्रह से जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आप गुर कर का छना जनावे हर नाम हृदय सत्यावे मन विच गुर के पात से के कार दराज सेवा कर तो इन काम को प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जी साफ करे नानक सो सेवा गुर की मत ले बेस बिस्वे गुर का मन माने सो सेव परमेश्वर की गल जाने सो सतगुरु दूसरे दया नावन के बार गुर को बल जाओ सर्व धान जी कदा ताट पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म इका बनाई का जब परम सह सुन भले न जाये नानक सतगुरु भागी पाई है सफल दर्शन प्रखर पनीत पारसत चरण निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवा पार ब्रह्म के दरगाह गावे सुनकर वचन करना गाने मन संत का तंपतियां ने पूरा गुरु का जंका मंत्र मृत फेंकवे संत गुण बेंद कीमत नहीं पाए नान जस पावे तुज लाए मिलाए जे बाकी अनेक सतपुरख परम सतपुरख पूरन बेक काहो बोल न पच प्राणी कम गच प्रभ निर्वाणी निराहा निर्वाह सुखदा इतना की कीमत गिन ना पाई अनेक भगत बंदा ने करे चरण कम हृदय सिमर सत बरियारे सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु अपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोए उस पर का

अंधकार दीपक प्रकाश से नानक परम मोह दुख तथे न से तब तुम्हारे ठंड वरताए नंद प्या दुख नाठे पाई जनमन के मिटे देश साधु के पूर्ण देश पहु चुका निरपो बस सगल प्या मन तके न से जिसका सातन कृपा तारी सा संदम नाम मरारी तुर पा चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हजा सर्वंदर गुनाम सरगुन पियो करता दिन सगली मोही अपने प्रभाव बनाए अपने कीमत आप पाए हर बंधु जनाई कोय सर्व निरंतर को सोए आओ

चरण कमर राखो मन माहे जन्म जन्म के कृप जाहे आप जो पोवर नाम जपाव सुनत कहत रहत गत पाव सार पोथ सरको नाम सहस भाई नान गुण गाव गुण गाव त्रि उत्तर समैर बिन सजाए हो मैं बिख पैल होए अचिंत बस सुगनाल सात गिरासर नाम समार छाड़ सन सगली मना सासंग पावे सच तना हर पुंज संत करो व्यवहार यहाँ सुख दरगा जका सर्व निरंतर एको देखो नान जाके मसु लेख एको जप एको सलाख सिमर एको मनाया है इसके गुण का अनंत मंतंदा बेग भगवंत एको एक करा पूर्ण पूर्ण प्रभ्याप अनुभव सारे कृत करा प्राचत गए

पूरे सदा साहब के गुण गाओ साहब तुम्हें दया वचन कमसोला के प्रीत भगत गुरु प्रभु की नित नीत एक ओटे को आधार नानी मांगे न ना प्रभ सार प्रभु की दृष्टि में सुखो बिरला को जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख ने डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग के संग पर सुरान सब त्याग अंतर प्रकाश सुंदर विलाग बड़ भागे जपया प्रभ सोए नानक नाम सुखोय सेव के मसा पूरी पे सगुर निर्मल मत लई

अंग एक बी जय करमया गुरु प्रसाद नाम जपने ताकि उपमा कही न दाय नार गृह सर्व समाय प्रभ संत दीन दयाल भगत सदा कृपाल है।

क्रोगम व्यापार अपना से सुखे अपना संता जन मन को काम बिना संध्या पूर्ण करता प्रभु सोए तब धमके त्रास कहो कैसे हो जब अभिक्त को प्रभु का तब चित्तर को जब नांद रंजन को तब कौन चुड़ कर मंदन बांधे

जे को मन जाने मन कोई मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ सं परगट जाए मन मग न चला पंथ मन धर्म सिति संबंध

तो जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सोई कावार कर कर वेखै सुरजनहार नानक सच्चे की साची कार।

सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेल सगल जगत चंगी आईया।

अनधान है, तर्वर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजानम है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, नरबूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति नधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो

नामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति बैभूते कलंकों बिना ने कलंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपोगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तु सन स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व परनासी अनुपे अरूपे समतुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगु ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजे समस्ताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पजांग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति नदाने नमस्तु नरनाथे नमस्तु परमाथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतु नमो सर्व पीतु नमो सर्व ज्ञानु नमो परमतानु नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दृश्यु नमो सर्व कृष्णु नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तु प्रसिजे कृपालु स्वरूपे कुकर्मु प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धु नवासी चार प्रसाद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकाल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकाल धर्म अलख कर्म सर्वु दाता सर्वु ज्ञाता सर्वु भाने सर्वु माने सर्वु प्राणु सर्वु त्राणु सर्वु भुगता सर्वु जुगता सर्वु देवु सर्वु पेबु सर्वु काले सर्वु पाले रुवाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान तरमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र वराज ही अब तूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख आधार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेस जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा बिसा होय फैल्यो अनराग नाम काम हीन पेखत ताम हूँ न जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे पे

परम परम ईसा समतल अदिश है अदिशल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमिकल इमा है करीमल कमाल है के जुरत जमाल है के अचनु प्रकाश है के मितो सुवास है के अजब स्वरूप है के मितो वैभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रवाह है के अचलु अनंग है के अमितो अपंग है मध्य पार्षद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम अर भर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अन छिज गंग अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस बिस बेअंत अनुभव अनास त्रित तरत रास आ जान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आ जिज नबात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आ ढीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत तो प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महामंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व अवारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है वसुं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकरित है अकृता कृत है धरणी तरित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंपर है करुणालय है नरपनायक है सर्व पायक है पप पंजन है अर्गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलुकृत है सर्व अकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग परे आत छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसु तामसु शांत रूपे नमो परम तत्व अततु स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादु बपुते कलंकर रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नरकामु बैपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मु परनासे सधर्मु बैपूते सदा सचदा आनंद सतरु परनासी करिमल कनिंदा समस्तल निवासी अजैब बपूते गजैब गनी में हरियं करियं करिमल रही में चतर चक्र वर्ते चतर चक्र भुगते स्वयं पाव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दोकालु परनासी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बपूते दोकालु परनासी दयालु स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਬਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰ ਅਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ਸਿਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਅਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋੜ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਪਲੀ ਬਿਦਨਿਆਬਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨੰਗਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਭਰੈ ਸਭ ਦੇ ਸਦਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਿਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਪਦ ਸਿਰੇ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਮਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸੇਖਾ ਬੇਦ ਭਰਾਨ ਕਤੇ ਬਕਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਵਾਨ ਸਵਾਨ ਕੇ ਪੇਖਾ ਪਾਨ ਆਹਾਰ ਜਤੇ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭ ਸਵ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸੁਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀ ਨਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਚਾਰ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰ ਤਦੇ ਸਮਲਿੰਦ ਮਮਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੀ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜ ਨਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਪਨਿੰਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪਾਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁਨ ਪਰਤਾ ਪੁਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਤਵ ਜੌਨ ਤੁਰਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਤ ਗਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਭਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ

ना हाथ फिरियो लिए सार समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखेहान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सब ऐस बतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लपाहन पूज धरियो सिर काहू लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह कुशी सनवायो को बतान को पूजत है पस को मरदान को

काल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहु मिट है नहीं रे पछतायो। तात विचार जह मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन घर बना आयो। सो कह टल गुर सेविया, एहन सहज सुभाय, दर्शन परस

मन तन अमृत पीजा बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जीजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान बख्शिश रहमत का सदका है। अमृत वेले तो ताकत ते प्रकाशमान हो के संगतां नूं नाम बाणी उपदेश द्वारा निहाल कर रहे हैं। गुरु साहिब श्री सुखमनी साहिब दे जाप पंज बाणी दे नितनेम ते हुण आप जी नूं गुरु रामदास जी महाराज डिठे सभे थाप नहीं तुद जे हया बुद्ध पुरख बधाते ता तू सोहया। धन श्री गुरु रामदास दे घर कीर्तनी है भाई सरबजीत सिंह लाडी और श्री आसा दी वार दे कीर्तन दे नाल जोड़न दी कोशिश कर रहे ने साध संगत जी। इहो जिहे महान कीर्तनियां नूं सुणन वास्ते अपना वड्डा भाग है अपने क्यों अपने पास आए ने। सो वध तों वध संगत पहुँच के लाहा लिया करो। धन श्री गुरु अर्जन देव जी शहीदों दे सरताज उन्होंने शहीदी पुरब आ रहे ने। संगत ने वध तों वध हाजरियां भर के गुरु घर खुशियां प्राप्त करनिया भुल चुक की खिमा करनी। हुण आप कीर्तन जुड़न की कृपालता करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बिन सतगुरु किरे न पाया, सतगुरु विच आप रखण कर प्रगट आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया। जग ज

पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खात पड़िए जिते बरस बरस पड़िए जिते साथ।

0: महाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अगै बस जानिए पितरी को करे बढ़िए हाथ लाल के बस पिए करे
1: नानक के सो मिले जे खटे काले जे भला पहला
2: जो जो रुसरावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख से नित धोई कुआर सूचे ना किए बैंड जे पिंडा तोई सूचे ही नानका जिन मन वस्या सोई।

0: पाए नानके की बाहरी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए
1: शुद्ध। वाहिगुरु जी का खालसा,
2: वाहिगुरु
1: जी की फतेह।
2: गुरु प्यारी साध संगत जी साहबां दी रहमत होई है। आप संगतां ने श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब फ्री माउंट तों सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी श्री दरबार साहिब वाले समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। सवाब हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श सुखमुख वाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे हन। सत्कार योग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों सरवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है जो कि साहब श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जिन्हां दे शहीदी पुरब गुरु घर विखे 16 तरीक मंगलवार शाम नूं मनाए जाने हन। कल ऐतवार शाम नूं श्री खंड पाठ साहिब आरंभ होणगे जिन्हां दीआं संपूर्णतावां मंगलवार नूं होणगीआं, उपरंत जो विशेष दीवान शहीदी पुरब संबंध विच होणगे। सो आप संगतां नूं बेनती है आप जी ने वध तों वध गुरु घर हारियां लवाउणियां जी। आओ कथा नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह।
3: वाहिगुरु साहिब जी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो गुर पूरा जिन सिमरिया

कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन प्रत्यक्ष हर सो कहो टल गुरु सेविया अहनस सहज सुपाही दर्श

अगले उठ नाठे दुखना नेड़े आया। शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई। नानक गुण गावे स्वामी के

साध संगत संग बनी जिन उद्दम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी। अठसठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद सुवा।

आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो जो तू दे तही एह तृप्त है आन न कत हु तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगल ऋण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता अपन ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजमा कर दूजा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अबर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण।

शिव के बाण सिर काटे उर हाउ, काल जाल जम जोहे न साके, सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किछन खुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया, अगम निगम कहे जन नानक, सब देखे लोक सबाया टूडी महला पंजमा, किरपन तन मन किल बिख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ढाकन को इक हरे रहाओ, अनेक छिद्र बोहित।

0: अमृत नाम तो सा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक उतरिया टोडी महला पंजमा। हमारे एक है हरि हरि, आन अवर से जान न करी रहाओ, बड़े पागुर अपना पायो, गुर मोको हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप वर्तने मां, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके ग्रह में आया। टूडी महला पंजमा, कर चौथा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंग लोड़ै, गली हर निहो न होए रहाओ। हो टुंडी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा, गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर मथ है। ए बिद नानक हर नैण अलोए, टूडी महला पंजमा। गर्भ गहलड़ो मूडो हियो रे, हियो महाराज री मायो, डिहिर न्याई मोह फाक्यो रे रहाओ। कणो कणो कण सुद लोड़ै, बिन लहणे कैठे पायो रे। महाराज रो गाथ बाउ स्यों, लुबड़ो निहा पागड़ो पाहो संजोरे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राशत मिट्यो रे। जा को लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजमा, घर पंजमा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिख्या ते, गुर को शब्द मेरा हीरे दीन। रूप अनुरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गहो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंत चिथा हर के पतीन। तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजमा, माई मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जापे ही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन धुर मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजमा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, विसर नहीं निमक हीरे ते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमर दृष्ट तारो प्रभमान। आठ पैर रसना गुण गावे, जस पूर अघावे समरथ कान। तेरी शरण जीन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजमन, प्रभ तेरे पग की तूर। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दह दिस रब रहया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभु न मरते चूर। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बसूर। सुख संपत भोग सजी के, बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजमा, माई मेरे मन की प्यास, इक खिन रह न सको बिन प्रीतम। दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल बिखनास। पूरन पार ब्रह्म पार ब्रह्म सुख दाते, अबनासी बिमर जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा पेटे गुणतास। शांत सहज सुख मन उपजियो, कूट सू कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजमा, हर हर पतत पावन, जी प्राण मान सुख दाता। अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतुर सभ्यता, रिद दास निवास भगतन गुण भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜਨ ਸੋਖਾਵਨ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾਦਾ ਆਨ ਬੀਓ ਦੂਸਰ ਲਾਵਨ ਰਸਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜਸ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲ ਜਾਵਨ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
1: ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੀ ਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਤੇਜੇ ਜਾਏ ਹੋ ਕਰਵਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੋ ਕਰਵਾਨੇ ਜਾਓ

ब्रह्म समावे सहज सहज मिल रहे अमरा पद पावन तलंग महला चौथा हर क्या कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया मलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया

हर कीरत गाए कर चानन मग दिखाया। होमे मार एक लेवला की अंतर नाम वसाया।

व्यर्थ गयो जन्म जिन की तो सो विसरे सोरठ सो रस पीजिया कबहू ना फीका होए नानक राम नाम गुन गाई दर गए निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारई अंदर नाम निदान सदा गुण सारई एका टेक अगम मन तन

नानक जो मथन मधाणिया त्यो मथे धर्म राय नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप अठो नंदन प्रथम राग पैर वह करही पंच राग ने संग उचरही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन्य सलेखी की पई बारी ए पैरो की पंचो नारी पंचम हरख दसाग सुनाव है बंगाल मद माधव गाव है ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पातर द्वितीया मालको सिख्या लाप संग रागनि पंचो थाप गुण करी हर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी पंचो गाई माल राखो सक संग लाई मारू मात अंग मेवारा प्रबल चंड को सिक्यो भारा खो खट्यो भौरा नद गाए अष्ट माल को सक संग लाए पुन्य आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सत उठे तन कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संग लाई पंच वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाय सरस बान ओहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पोनी आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कौंतलियो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गोरा ओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आसावरी तै पाछे सिंध भी अलापी श्री राग स्यो पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खाट मेघ राग वह गावे पंचो संग बरंगन लावे सोठ गुंड मुलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सरसु हो पुन कीनी मेघ राग से पंचो चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट यो जल तारा

सब है पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तेल ना तमाए केते मंगे जो

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी भौ लख होए लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीस। एत राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीसा।

पंजमा गुरपूरै किरपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए

गुरु पातशाह जी ने पूरी कृपा की है। धन गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव महाराज कहते साढ़े कृपा की, साड़ी जिहड़ी अंदर लोच सी, पूरी लोच सी नाम जपन की, उन्हें पूरा करता। पर साड़ियां लोचा होर हन, गुरु महाराज जी सानू कहिंदे आ भी साड़ी लोच है जिहड़ा असी वाहिगुरु जी का नाम जपना है, वह लोचा नूं धन गुरु नानक साहब जी ने, मेरे गुरु ने पूरा करता। असी नाम का इशनान करके अपने निज घर च वस गए, आके घर इशनान ग्रह आए, जदों नाम का इशनान किया अपने ग्रह आए अंदर निज घर।

सेवक नाही जम पेड़ सर्ब दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ बसे प्रभ का नाम अंतन आधार विसरत नाम होवत तन छार

मन राता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कवावा नानकी बेनती स्वामी तेरे जन देखण पावा वडभागी से काढ़िए प्यारे सतसंगत जिन्ना वासो अमृत नाम आराधिए निर्मल मन होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे जमकी चुके जमकी काणे तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे ऊच अपार बेअंत।

बिखे वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी न होवत जियो मान महत न सकति ही काई सादा दासी थियो नानक से दर शोभा वंते जो प्रभ अपने कियो हरी चंदौरी चित परम सखिए मृग तृष्णा द्रम छाया चंचल संग न चालती सखिए अंत तज जावत माया रस पोगण अत रूप रस माते इन संग सुख न पाया तन तन हर साध जन सखिए नानक जिनी नाम ते आया जाए पुसो पुछो जाए बसो बड़ भागणी सखिए संता संग समाइए तह भूख न दुख न रोग ब्यापे चरण कमन लिवलाइए तह जन्म न मरण न आवण जाना निःचल सरणी पाइए प्रेम बचहो न मोह ब्यापे नानक हर एक त्याइए दृष्ट तार मन बेद्या प्यारे रतड़े सहज सुभाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए।

ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग, बार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ, सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के एहे अवखद जोग, आए बसो कर देश में एहे पले संजो।

उठ सुधारे छतरपत संतन कै ख्याल रहाओ अहां बद को बिनसना एह तुर की ढाल बहु जोनी जन्म मरे बिखिया बिकराल सत बचन साधु कहे नित जप है गोपाल सिमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल। बिलावल महला पांजवा सहज समा

कर कर पाप धर्म किया वर्तन कहताई माटी सिओ माटी रली नांगा उठ जाई जाके किए शर्म करे ते बैर विरोधी अंतकाल पज जाहेंगे काहे जलह करोदी दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा।

साकत स्यों मुख जोरी है अद बीच हो टूटे हर जन की सेवा जो करे ईत उत है छूटे सब किछ तुम ही ते होआ आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुर गुण गाई। बिलावल महला पंजवां सरवणी सुनो हर हर हरे ठाकर जस गावो चरण कमल कर सीस तार हर।

पर यह दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोह को सतगुरु मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वचल कृपाए जो जो

प्यारो मने आधारो जीत चितवो जैसे पान तबोली रहाओ। सहज समायो गुरह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत आंग आंग संग पमौली।

निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे का जपिया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख।

नितर तिस रसना का मूल किश नाही रहाओ। कुल समुद्रे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन बागाही। चरण प्रभु के बहुत पाहे, चरण प्रभु के बोहित पाए भव।

ब्रह्म भय के परापार ब्रह्म प्रभ भय कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भय रवाल कंठ लाए राखे जने अपने उदर गली।

अपने सेवको कबूना बेसारो और लागो स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोविंद विचारो रहाओ पतित पावन प्रभ वृद्ध तुम्हारा।

जो अंजै सो दिसै काल कार्य सिद्ध और दै संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाए मनमुख होमै पात गवाई आपे करतै भगत कराए गुरमुख आपे दे वडियाई रैन अंधारी निर्मल जोत।

0: भेद न जानत।
1: महादेव को कहत सदाशिव
0: निरंकार का जीनत न पिव।
1: आप अपनी बुद्ध जेती
0: मरनत पेन पेन दोय तेती।
1: तुमरा

तुझ बिन कौन हमारा। आप जी ने सर्वसम्मत किया है, सो समय की समाप्ति है। आओ सारे लड़के आपां आनंद साहब का जाप करिए, उस तो उपरांत अरदास।

तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवें, प्रथम भगवती स्मृति गुरु नानक लई त्याय, फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय जस डिठे सब जुग जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ दयावे ताए, सब थे सहाय दसवें पातशाह, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थेणा जी सहाय दसा पाछियां दी जोत, धन धन धन श्री ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दे दर दा ध्यान दर खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु। पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता, तिना प्यारियां सुचारियां दी कमाई दा ध्यान दर खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दर के खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को

अमृत छाट बिखै बिखाहे माया मो परम पै पुल्ले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पं सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

कमल अनूप अगन निवारी सतगुर देव सेवक अपनी लायो सेव अकिरत घणा का करे उधार प्रभ मेरा है सदा दयार सांचना का सदा सहाई चरण कमल नानक सरणाई राम कली महला पंजवा पांच सिंह राखे प्रभ मार दस बघ्याड़ी ले निवार तीन आवर्त की चुकी घेर।

जुगत अब कीजै। जाते दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन पीजै रहाओ। मन माया में उर्ज रेव है, बूझै न कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाकै सिमरै, पावै पद निर्वाना। उर्ज रेव है, बूझै न कछ ज्ञाना। मन रहाओ मन माया में उर्ज रेव है, बूझै न कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाकै सिमरै, पावै पद निर्वाना। पै दयाल कृपाल संत जन, तब ए बात बताई। सर्व धर्मानु तै किए, जय प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निस बासर मैं, निमख एक उर तारै। जम को त्रास।

कहूँ विहवे रसना साध, कहूँ विहवे पर दर्ब चोर आई, हर जन विहावे नाम त्याई, काहूँ विहावे जोग तप पूजा, काहूँ रोग सोग परमीजा, काहूँ पवन तार जात बिहाई, संत विहावे कीर्तन गाई, काहूँ विहावे दिन रात चालत, काहूँ विहावे सो पिड़ मालत, काहूँ विहावे बाल प्रावत, संत विहावे हर गुण गावत, काहूँ विहावे नट नाटक नृत्य, काहूँ विहावे जी इहिरति, काहूँ विहावे राज में डरते, संत विहावे हर जस करते, काहूँ विहावे मसा मसूरत, काहूँ विहावे सेवा जरूरत, काहूँ विहावे सोदत जीवत, संत विहावे हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगना, ना को मूड़ नहीं को सियाना, कर कृपा जे देव नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, राम कली महला पंजवा, दावा अग्न रे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जाका नाम सिमरत पौ जाई, तैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जद कर देखो तुम प्रतपाल रहो, जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत, धन विकसह ग्रह आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किरसाणी हर जन राखे कंठ लाए, किरसाणी हर जन राखे कंठ लाए, ज्यों अंधले पेखत होए आनंद, गूंगा भक्त गावे बोछंद, पिंगल पर्वत पति पार, हर कै नाम सगर उधार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राशत संत संग विनाश, ज्यो साबुन का पर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पक होत, ज्यों जगवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पहे ता पहे अतीत, दया धारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सावधान देखे आन नैण अलोए, तिस बिंदु जाय वर न कोय, भ्रम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेखियो सब बिस्माद, राम कली महला पंजमा, जी जन सब पेखी है प्रभ सगल तुम्हारी धारना, ई मन हर कै नाम उदारना, रहो खिर मैं था बोथा पे कुदरत, सब करते के कारना, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग विदारना, नाम जपत मन निर्मल होवे, सुख है सुख गुदारना, भगत शरण जो आवे प्राणी, तिस इहा उहा नहारना, सुख दुख मन की बिरता, तुम ते आगे सारना, तू दाता सबना जिया का, आपन की पालना, अनक बार कोट जाने ऊपर, नानक वन्य वारना, राम कली महला पंजमास, पदिय के ओंकार सतगुर प्रसाद, दर्शन पेट पाप सब ना सह, हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दड़ाए, अंते हुए सखाई राव, सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तुहर मुख लाई, पतत पुनीत किए किन भीतर ज्ञान, अंधेर वन्याई, करण कारण समरथ स्वामी, नानक ते शरणाई, बंधन तोर चरण कमल दड़ाए, एक शब्द लिबलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो, साच शब्द बनियाई, जन्म मरण का सह सत सुखा, बहुड़ कत हो न थाई,
नाम रसायन ए मन राता अमृत पी त्रिपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई पूरे गुरपुरी मदिनी हर बिनिया न पाई नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुखत न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तब संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कल तरमा विखिया मैं गुर साचे लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई सात रम का बेड़ा बांधे पवित्र पार पवाई बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बरबल जाई आकार मूरत आजू नि संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीअन का दाता देखत त्रिपत आकाई एकंकार निरंजन निरपो सब जल थल रहा समाई भगत दान भगतां को दीना हर नानक जाचै माई राम कली महला पंजवां श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा तारा प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सतगुर खेब निवाही संतो हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही संतो राव खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कह ना जाई संतो चरण कमल से लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तिवत कही संतो आत्म राम रव्या सवंतर कता वे कजाई संतो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाइए पूर रहया सब ठाई संतो भी साजन माल जोवन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजमा मानवा जकरम राम नाम चितारी घूमन केरमा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मरण भय दुष्टारी जिस ते लागी तिने निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा तारी उदरे संत परिहर शरणी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगते फल पाया ये केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगटी ज्योत तुम्हारी तुम समरथ अकथ गोचर रव्या एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रव्यंत न पारा वारी नाम दान नानक वड़ियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द उतां गाव हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया

करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन होवे सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब भजाइया सदा कुरबान कीता गुरविटो जिस दियां ए वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागै कर सभागै।

तित कर अन हदवाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै वाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया ईस न होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै वाजो क्या करे

संतां के कार्य आप खलो हर कम करावन आया राम। ये तुसीं जो सतगुरु जी पावन हजूरी च बैठते हो तो साध संगत कहिंदे तुहानू सारे नूं साधु भी किया ते संत भी किया। जो इस तरह असं बैठते ना सतगुरु बड़ा सत्कार करते साडा कहते आवो संत प्यारे हो अकथ की करें कहा अकथ क्या वाहगुरु जी ने कि उहदी कोई गल करिए आओ वो संत प्यारे हो अकथ की करें कहानी करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे भाई। बस ये मानस जन्म का जोड़ा मनोरथ है साढ़ा भी वह किमें पूरा करिए। फिर कहते तन मन धन सब सौंप गुरु को तन करके बैठे तुसी मन नहीं सौंपते असं ध्यान साढ़ा होर गल्लां च रहिंदा तन मन धन च लगी जा रहा श्वासां दा धन क्या जिहड़ा तुहाडा खर्च हो रहा हुण हजूरी च बैठ के जिहड़ा खर्च हुंदा वा ना वह सफल हो जाता धन श्वासां दा। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया भाई किते गुरु दा हुक्म मन लो ते पालोगे ते हुक्म इहो ही है गुर प्रसाद जप पहले अंग ते जदों आपां पढ़दे आ ना सतगुरु दे दर्शन करदे आ पहले अंग ते हुक्म लिखिया की लिखिया जी गुर प्रसाद जप ते जप किहनूं वाहिगुरु नूं जिहड़ा आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ते ओ तुसी जयकारा करना हुंदा वाहिगुरु दा वाहिगुरु जिसका कार्य तिन्हीं किया मानस किया बेचारा राम ते भगत भी किया तुहानूं भगत सोहन हर के गुण गावे भगत सोहन बड़े सोहने लगते कहिंदे भगत जदों दे गुण गाउंदे आ सदा करें जयकारा जिहड़ा करदे वाहिगुरु वाहिगुरु है ना किते गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी। ये तुसी हुण जिन्ना चिर गुण गाउणे आ ना जे ते ध्यान लग गया साडा वाहिगुरु च फिर आनंद आऊगा वो तुसी आप ही चैक कर लिओ है ना। लिखिया गुण गाए गोबिंद गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी। हुण आपां फिर ना मैनू कहना पवे अखां बंद रखणियां है ना क्योंकि मन जिहड़ा ना इहनू आनंद देना हुण ये मन मेरे आ तूं सदा रहो हरी दे नाल नहीं जुड़दा ये आपां कोशिश करदे आ ना वाहिगुरु जे तैने सुण लिया जुड़ जूगा नहीं तो नहीं जुड़ता ये भज जांदा आपां इत्थे बोली जांदे आ ते पता नहीं किधर फिरदा। ता ही उन्हें कहा ही प्रभु की उस्तुत करो संत मीत तुहानू कहा संत मीत सावधान जो अखां बंद कर दे उदों ही मन एकागर हुंदा वा एक एकागर दा मतलब एक नहीं तो इत्थे दोनों हिस्सों च बैठा बाहर वेखी जांदा। इसलिए एकागर चीत किया उन्होंने जो एकागर हो जाता उन्हें चित कहिंदे मन नूं उदों की कहिंदे जी मन नूं चित दशमेश भी तां कहिंदे एक चित जे एक छिन ते आयो काली काल की फाही जो निकल जाएगा पर हुंदा नहीं गा पर हुण तुसीं जदों बारंग बार बार प्रभ जपिए बार बार करोगे हो जाएगा सीखना ही हुंदा असीं कि कोई ध्यान नहीं करना इधर उधर जो मर्जी होई जावे फोन साइलेंट ते ला दिओ ठीक है जी ते आपां बड़े प्यार नाल जिहड़ा उच्ची बोलदा हौली बोले जिहड़ा हौली बोलदा उच्ची बोले ते इक्को ही सुरती हो जावे इक्को ही आवाज होवे सब सुरती मिल तुहाडी जिहड़ी आवाज निकलनी है ना वाहिगुरु तुसीं इहदे विच सुरती जोड़ के वेखियो सारिआं दी आवाज दे विच इहनूं साधुआं दी धूड़ी कहिंदे आ माघ मजन संघ साधुआं तुहानूं साधु कहिंदे धूड़ी कर इह फिर मन बड़ी छेती निर्मल हुंदा जदों साधुआं दी धूड़ी इहनूं मिलदी है। उत्थे लिखिआ हर का नाम ध्याए सुण
ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਗਈ ਨਾ, ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਵੰਡਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੁਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਘੁੰਮਰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ।